जीवन या त शीतलता दिम, जीवन या त जीवित यही म, अलिना पाँ छेगु जीवन या पला पला नहीं पुकी म, किप्स एफएम, छेगु जीवन या सदायम पासा, किप्स 98.3 एफएम

जीवन यात्रा शीतलता बीमा किप्स 98.3 FM जीवन यात्रा जीवित यही माँ किप्स FM पलेना पाँच छिगु जीवन या पला पला नहीं पुकी माँ किप्स FM छिगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 FM

जीवन यात्रा शीतलता की माँ, जीवन यात्रा जीवित यही माँ, अलेना पाँच छिगु जीवन या पला पला नहीं पुकी माँ, किप्स एफएम छिगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

0: Life-Changing Quotes。शान्ति आफै भित्रबाट आउँदछ, यसलाई बाहिर नखोज। यो उपदेश हो भगवान गौतम बुद्धको।
1: पुरै एक घन्टा तीनवटा मुभीजका सुपरहिट गीतहरू
2: थ्री इन वन
3: एभ्री स्याटरडे 9 AM एन्ड थर्सडे 6 PM
4: Keeps FM 98.3 megahertz. RJ Wanted.
5: Do you have the voice, energy, and passion to entertain people every day?
4: We're hiring radio jockeys to host shows, connect with listeners, and bring music to life.
5: Clear voice, confidence, and creativity required. For the voice test, apply now at rj.keepsfm@gmail.com. Phone number 01-5673-114. 01-5673-114.
4: Be the next big voice on Keeps FM 98.3 megahertz.
6: Hazur. न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी।
7: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्। ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
8: यू कैन डांस,
9: यू कैन सिंग, ऑल यू गॉट टू डू इज
10: जस्ट ट्यून इन
1: किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़, योर कंपेनियन, द रेडियो ऑफ न्यू जनरेशन।

0: लो याद सुनो लो गीत बॉलीवुड गोल्डन हिट्स कीप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज मा
1: दिल दीवाना बिन सजना के
0: आइतबार र मंगलबार दिउँसो 4 बजे सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईंकै रेडियो कीप्स एफएम मा

0: हरेक शनिबार बेलुकी 10 बजे
1: Keeps FM 98.3 megahertz. RJ wanted.
2: Do you have the voice, energy, and passion to entertain people every day?
1: We're hiring radio jockeys to host shows, connect with listeners, and bring music to life.
2: Clear voice, confidence, and creativity required. For the voice test, apply now at rj.keepsfm@gmail.com. Phone number 01-5673-114. 01-5673-114.
1: Be the next big voice on Keeps FM 98.3 megahertz.
3: Hazur. न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल स्कुटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्र्याक्टर जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी
4: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागी गुगल गर्नुहोस् बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स
5: What's the secret to success?
6: Simple. Say yes to radio advertising.
5: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
6: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
5: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
7: अब इन्टरनेट ढिलो होइन छिटो स्मार्ट र सुरक्षित
8: इन्ट्रोड्युसिङ वाइफाई 6 विथ सुबिसु सुरक्षा
9: वाइफाई 6 सँग पाउनुहोस् हाई स्पीड र स्टेबल इन्टरनेट
8: साथै सुबिसु सुरक्षाले तपाईँलाई राख्छ अनलाइन ब्राउजिङमा सुरक्षित
9: हानिकारक साइट असुरक्षित कन्टेन्ट अब सबै इन्स्टेन्ट ब्लक हुन्छ
7: सुबिसु छिटो पनि सुरक्षित पनि थप जानकारी तथा बुकिङका लागि
10: 01-42-35-888 98-12-35-888
11: You can dance.
12: You can sing. All you gotta do is
13: just tune in.
12: Keeps FM 98.3 megahertz, your companion. The radio of new generation.
14: Stay connected with your favorite station, Keeps FM 98.3 megahertz.
6: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
14: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.

0: We're hiring radio jockeys to host shows, connect with listeners, and bring music to life.
1: Clear voice, confidence, and creativity required. For the voice test, apply now at rj.geeksfm@gmail.com. Phone number 01-5673-114. 01-5673-114.
0: Be the next big voice on Keeps FM 98.3 megahertz.
2: What's the secret to success?
3: Simple. Say yes to radio advertising.
2: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
3: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
2: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
4: तेरी झ्याप झ्याप बत्ती गएर हैरानै भयो
5: अब धन नमान्नुस् ननस्टप पावर पाउन अब एकदमै कम खर्चिलो र भरपर्दो इन्भर्टर ब्याट्री ब्याकअप सिस्टमको लागि ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा सम्पर्क गर्नुहोला सुरुवाती मूल्य मात्र 16,999 रुपियाँदेखि
6: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स
7: यू कैन डांस
8: यू कैन सिंग ऑल यू गॉट टू डू इज
9: जस्ट ट्यून इन
8: Keeps FM 98.3 MHz, your companion. The radio of new generation.
10: Amilai Sunhos, www.keepsfm.com Marfat. Just tune in, radio, naya generation ko.

0: एक घंटा तीनवटा मूवीज का सुपरहिट गीत
1: इन वन
2: एवरी सैटरडे 9 AM एंड थर्सडे 6 PM।
3: सत्तरी को दशक देखि आज सम्म का हिट गीत हरेक धुन संग जोड़िएको समय को कथा कार्यक्रम सॉन्ग्स टाइमलाइन जहां हरेक गीतले सुनाउँछ आफ्नो इतिहास। Sunday 7 AM, Monday 8 PM, and Tuesday 3 PM.
4: Station Keeps FM 98.3 MHz.

0: Cheeps FM 98.3 MHz. Your companion. Your companion. Your companion.
1: सौंदर्य, स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ज मा शनिबार बेलुकी 7 बजे मंगलबार बिहान 7 बजे र बुधबार दिउँसो 3 बजे
2: What's the secret to success?
3: Simple. Say yes to radio advertising.
2: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
3: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
2: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.

0: Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा
1: राजा मोतीवा मोती नायेवा मैं पूछी जंग गुटु खेले
2: नेपाल भाषाया न्याय पुसिचौं मेता
3: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज

0: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कूटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी।
1: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यु काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678, 5302678। लोकेसनको लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री सप न्यु काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
2: What's the secret to success?
3: Simple. Say yes to radio advertising.
2: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
3: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
2: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
4: एक फूल झरे रे के भो, एक फूल झरे रे के भो।
5: नेपाली सुपर हिट्स।

0: हिट्स 98.3 एफएममा गजल संसार
1: मुझसे मिलने क्षमा जलाकर आज महल में
0: गजल संसार
1: का खजाना तेरा भी है मेरा भी।
2: हर एक शनिवार बिल्की 10 बजे
3: KIPS 98.3 FM, your companion.
4: KIPS FM 98.3 presents Beauty, Health and Lifestyle.

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम कलियुग टाइम
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12.

0: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ
1: के
2: ई
1: बी
2: एस
3: किप्स 98.3 FM योर कम्पानियन
4: मिक्स मैक्स एट 98

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम कलियुग टाइम
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
1: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स FM 98.3।

0: Keeps FM, 98.3 megahertz. RJ Wanted.
1: Do you have the voice, energy, and passion to entertain people every day?
0: We're hiring radio jockeys to host shows, connect with listeners, and bring music to life.
1: Clear voice, confidence, and creativity required. For the voice test, apply now at rj.keepsfm@gmail.com. Phone number 01-5673-114. 01-5673-114.
0: Be the next big voice on Keeps FM 98.3 megahertz.
2: तेरी झ्याप झ्याप बत्ती गएर हैरानै भयो
3: अब धन्ना नमान्नुस् ननस्टप पावर पाउन अब एकदमै कम खर्चिलो र भरपर्दो इन्भर्टर ब्याट्री ब्याकअप सिस्टमको लागि ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा सम्पर्क गर्नुहोला सुरुवाती मूल्य मात्र 16,999 रुपियाँदेखि
4: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागी गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स
5: यू कैन डांस
6: यू कैन सिंग ऑल यू गॉट टू डू इज
7: जस्ट ट्यून इन
6: Keeps FM 98.3 megahertz your companion the radio of new generation
8: What's the secret to success?
9: Simple. Say yes to radio advertising.
8: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
9: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
8: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
10: हजुर न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल स्कुटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्र्याक्टर जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी
4: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स
7: स्टे कनेक्टेड विथ योर फेभरेट स्टेशन Keeps FM 98.3 megahertz
9: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
7: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
11: Keeps FM 98.3 megahertz. Your companion. Your companion. Your companion.
12: Touch me, touch me, touch me.
13: Rewind. Rewind. Bollywood.

0: एक्सप्रेस को साथ अब नेपाल भरी 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज ऑन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: व्हाट्स द सीक्रेट टु सक्सेस?
3: सिंपल, say yes to radio advertising.
2: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
3: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
2: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
4: Namaskar and hardik swagat cha. तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ किप्स 98.3 FM।
5: हजुर नमस्ते अनि स्वागत छ, यो किप्स एफएम 98.3।
6: हजुर नमस्कार, किप्स 98.3 FM।
7: यो हो किप्स 98.3 FM, तपाईँसँगको सहयात्रा।
8: नेपाली सुपर हिट्स